0: तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुने एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुने एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो
3: डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलुदुत्कु नगरपालिका 5 सोलुखुम्बु।

0: नागरिक सहायता कक्ष संचालन होने संबंधी आदरणीय सेवा ग्रही महानुभाव यातायात व्यवस्था कारणी पूर्वांगण सेवा प्राप्ति को सहजीकरण का नागरिक सहायता कक्ष संचालन कर उक्त कक्ष मुक्ति को सेवा प्राप्त करने सकूल सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष का संपर्क राखने अनुरोध कर सेवा प्राप्ति में कति को प्रलोभन में नगरी आपको सेवा लिना हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कई गुनासो आईना अधिकार कार्यालय प्रमुख सभा संपर्क कोची प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय विराजमान
1: शर्मिला बधाई एसी उत्तीर्ण
2: तिमी बधाई अलेज कहाँ पढ़ने भो नि
1: मैं तो काठमंड को चावेल सरस्वती नगर में रहकर रिलायंस इंटरनेशनल एकेडमी में पढ़ने निधो कर सके तिमी
2: मत कहाँ पढ़ने अन्योल में छू भने
1: के अन्योल में पढ़् हो हमी कक्षा दस में मिले पढ़ियो अब तीन संगे पढ़ऊ न तिमी रिलायंस में भर्ना भाई भैया नि
2: अनि त्यहाँ चाहिँ कुन कुन विषय पढाइ हुँदो रहेछ
1: त्यहाँ त विज्ञान व्यवस्थापन का विभिन्न विषय छानी छानी पढ्न पाइने रहेछ नि
2: हो र कुन कुन विषय पढाइदो रहेछ त्यहाँ
1: त्यहाँ त विज्ञान अनि व्यवस्थापन अन्तर्गत बिजनेस स्टडीज होटल म्यानेजमेन्ट कम्प्युटर साइन्स फाइनान्स जस्ता विषयहरू रोजी रोजी पढ्न पाइने रहेछ
2: ए ल उसो भए म पनि रिलायंस नै जान्छु अनि त्यहाँको अन्य विशेषता चाहिँ के रहेछ नि
1: ल सुन देशभर का हजारों मावी मध्य टप फाइव भित्र पर्न सफल दक्ष शिक्षक द्वारा अध्यापन कराइने उत्कृष्ट नतीजा सुविधा संपन्न भौतिक पूर्वाधार विषयगत अत्याधुनिक प्रयोगशाला अनि जिम्मेदार र उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति को समय व्यवस्था रहेछ रिलायंस इंटरनेशनल एकेडमी सरस्वती नगर चावल काठमाडौं गोपीकृष्ण हलभन्दा 100 मीटर पूर्व संपर्क 01-4822-336 48-12-445
0: आर्थिक वर्ष 2084 का लागि प्रदेशबाट संचालन गरिने आयोजना कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आवेदन सम्बन्धमा कृषि प्रदेश योजना आयोगको आयोजनाको वर्गीकरण आधार तथा मापदण्ड निर्धारण र आयोजना व्यवस्थापन कार्यविधि 2082 बन्दछन् स्थानीय तहर प्रमुखको कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष 2083-84 कार्यान्वयन हुने आयोजना कार्यक्रमको सम्बन्धमा यस आयोगबाट मिति 2082 साल चैत्र 9 गते आयोजना बहिसूचना प्रणालीमा दस प्रस्ताव आह्वान भएको हुनाले 2083 साल वैशाख 62 गतेमा प्रणालीको प्रयोगमा हुँदा आयोजना प्रस्ताव गर्नु हुन कृषि प्रदेश सरकार मार्फतका कार्यालय स्थानीय तहहरूलाई जानकारीको लागि यो सूचना प्रसारण गरिएको छ साथै आयोजना प्रस्ताव सम्बन्धमा स्थानीय नागरिकले सम्बन्धित स्थानीय तह र संस्थाको कार्यक्षेत्र रहेको स्थानीय तह तथा आयोजनाको सम्बन्ध कार्यक्षेत्रमा रहेको प्रदेश कार्यालयमा सम्पर्क राखि हुन अनुरोध गरिन्छ प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना विस्तृत आयोगको वेबसाइट ppc.kc.gov.np हेर्न पुनः सबैमा यसै सूचना मार्फत अनुरोध गरिन्छ कोशी प्रदेश सरकार प्रदेश योजना आयोग विराट नगर नेपाल नागरिक सहायता कक्ष संचालन होने संबंधी सूचना आदरणीय सेवा ग्रही महानुभाव यातायात व्यवस्था कार्यालय पूर्वांगण सेवा प्राप्ति को सहजीकरण का नागरिक सहायता कक्ष संचालन कर उक्त कक्ष मुक्ति को सेवा प्राप्त करने सकूल सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष का संपर्क राखने अनुरोध कर सेवा प्राप्ति में कति को प्रलोभन में नगरी आपको सेवा लिना हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कई गुनासो आईना अधिकार कार्यालय प्रमुख सभा संपर्क राख्न सक्नुहुनेछ कोशी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामला तथा कानून मन्त्रालय विराजमान और प्रिंट म्यूजिकर को रकम व सवारी साधन को नंबर एक करने संबंधी सूचना आदरणीय सेवाग्रही महानुभाव तपाईले आफ्नो सवारी साधन को वार्षिक रूप में बुझाउन पर्ने सुधारी कर नवीकरण वस्तु लगायत अन्य कर संबंधी वितरण हेन का संबंधित यातायात कार्यालय में गए कर प्रिंट मांग बैंक भोचर करना अगि सवारी कर तथा वस्तु एकिन करना तथा कर बुझाए पी प्राप्त होने बिना आपने बुझाई कर को रकम आपको सवारी नंबर एकिन करना होना इसे सूचना मार्फत अनुरोध कर
3: कोशी प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री

0: सोलु एफएम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: Soundcheck. Studio FM. The studio time.
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुर्गुंडा नगर पालिका 5 सोलु कुम्बू

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: और प्रिंट म्यूजिकर को रकम भवारी साधन को नंबर एक गणेश सम्बन्धी सूचना आदरणीय सेवाग्राही महानुभावर तपो सवारी साधन को वार्षिक रूप में बुझाऊन पड़ने सवारी कर नवीकरण वस्तु लगायत अन्य कर सम्बन्धी वितरण हेन का संबंधित यातायात कार्यालय में गए कर प्रिंट मांग बैंक भोचर करना अगि सवारी कर तथा वस्तु एक तथा कर बुझाए पी

0: सोलो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्ज्वल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: Sanche Surya Film The Studio Time
2: It's 1 PM Dusako Ek Bajer
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुकुम नगर पालिका पांच सोलू कुंभू
2: आदरणीय श्रोतावृन्द तपाई अहिले सुनिरहनु भएको छ सुन्न एफएम सुन्न एफएम अब तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय हुंडा ब्रांड की मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब उखरुज जिला को मिलन क्षेत्र
1: का विशेषता
2: जापानीज ऊर्जा प्रणाली उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भरपर्दो
2: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नयाँ नयाँ भर्सन बजार में लन्च भइरहेको
2: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यवसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
1: हाम्रा सेवाहरू
2: उखलढुङ्गा र खोटाङको विज्ञान बजारबाटै फाइनान्स को सुविधा सहित हुन्डाका सबै मोडल का मोटरसाइकल तथा स्कूटरहरू कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकै मोडल का जेन्युइन पार्ट्स का साथ ही सर्विस में सेवा
2: एक्सचेंज गो सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग करी भुगतान गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
2: उपभोक्ताको लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गोरुमारी भिजन उखलढुङ्गा
1: सम्पर्क नम्बर 037590222 9852888002 र 9842803000

服部が出る有名な部分を起こすと、となって関連するに、ビジネスサーマンキーのデザルとチャーチャーレタポセーチャーレ、とっていいパン。オフ、アブサーマンドが、たはのりジャムポニオフィキャン、ダッドハン、ティープリコストーサマンのショー、ビジネスサーマンのカフェのキラザニー、アンデイシュルクルバ、ショップトゥパインシャドウ。ए वोरा दीदी कहाँ पाएं था मत खुशदा खुशदा था कि सके हो लसुन बने सुनो दुखुंगा नगरपालिका उड़ाने में पास में हुए को शांति स्टोर एंड सप्लाई खोली तेरे दूसरे का संपूर्ण नया सामान मेरे होल्ड तथा खुदरा मूल्य ना पाएं शन बोर्ड आधुनिक सीख वाइडिंग का सामान जी कुछ तेही तैयार लो नए सामान पने पाने पुराने सामान पने मरमत होने ये तो ढूंढना खुशदा बेहतर मिले रस्ते भरने दीदी हजुर बिजुली को भरपर्दो सह यात्री शांति स्टोर एंड सप्लाईज सोलु दुतकुंड नगर पालिका वड़ा नंबर 5 सल्लेरी सोलु खुंडो यहाँ बिजुली का संपूर्ण सामान होलसेल तथा खुदरा मूल्य में पाने का साथ ही नया तथा पुराना सामान मरमत पनि गरिन्छ थप जानकारी का लागि संपर्क नंबर गुरु कुल नारायण श्रेष्ठ 9763-0057-84 विवेक श्रेष्ठ 9862-82-0000 सुनो दुखुंड नगर पालिका पास फैलिरहे सुनो खुम्बो तपाईं शिक्षण पेशामा आफ्नो भविष्य बनाउन चाहनुहुन्छ बालबालिकाको भविष्य उज्जवल बनाउँदै समाज सेवा गर्ने एउटा सुनौलो अवसर सोलु खुम्बु जिल्लाको सोलु दुपुण्ड नगरपालिका वडा नम्बर 10 तातिन च्याङका स्थित ओमछु आधारभूत माध्यमिक विद्यालयका लागि एकजना दक्ष अंग्रेजी शिक्षकको आवश्यक परेको हुँदा यसै सूचना मार्फत सम्पूर्णमा जानकारी गराइन्छ सेवा सुविधाहरू खाने बस्नेको सुविधा विद्यालयद्वारा नै उपलब्ध गराइनेछ तलब आपूर्ति सुविधामा प्रदान गरिनेछ पद अंग्रेजी शिक्षक एकजना आवश्यक न्यूनतम योग्यता कक्षा 12 उत्तीर्ण वा सोभन्दा माथि थप सिर्फ सामान्य कम्प्युटर सम्बन्धी ज्ञान भएको हुनुपर्नेछ आवश्यक कागजातहरू नागरिकताको प्रतिलिपि फोटोकपी र शैक्षिक योग्यताका प्रमाण पत्र थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बरहरू 9 3 0 5 विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष 9 6 6 41 74 र 3 0 5 वस्तु सञ्चालक 9 41 15 90 82 सोलु दुतकुण्ड नगरपालिका वडा नम्बर 10 73 शून्य

Ambika ko girin kara na bai danna ए अम्बिका को गिरिंकारा नभई दन्न यतु बस गयो कन्छी

0: का श्रम होना शिक्षा दियो सरकार विज्ञापन
1: नमुना दुपकुंड आयल फॉर्म स्टोर हम प्रतिबद्धता पेट्रोलियम पदार्थ में शुद्धता यहां डीजल के पेट्रोल तपाई भरने के समय में तुरंत उपलब्ध संपर्क व्यक्ति परशुराम तामाल 98 47 85 35 19 समुद्र साक्य 98 61 83 35 34 34 टेलीफोन 0 38 5 20 243 नमूना दुपकुंड आयल फॉर्म स्टोर प्रोपाइटर तरण कुमार श्रेष्ठ 98 62 82 13 87 नमूना दुपकुंड आयल फॉर्म स्टोर संगे न्यू आई सॉ मोटर पार्ट्स एंड सप्लायर्स में संपूर्ण गाड़ी मरमत संबंधी सेवा उपलब्ध छ यहां साना तथा ठूला जुनसुक गाड़ी मरमत कर संपर्क रमीला श्रेष्ठ 98 62 93 06 46 नमूना दुपकुंड आयल फॉर्म स्टोर सोनू दुपकुंड नगर पालिका 7 गारमा जोरबौद सुलुखुम्बु।

0: నాగరికత అయితే కక్ష సంచాలన అదనీతిగా గ్రహి మహానుభావులు యాతత్ వ్యవస్థ కరణిబాట ప్రభావం సేవా ప్రాప్తికి సహజీకరణకు నాగరిక సహాయతా కక్ష సంచాలన ఉక్త కక్షబాట ముఖ్యకు సేవలు ప్రాప్తకున్న సహేష సేవా ప్రాప్తికు నాగరిక సహాయతా కక్షగా సంపర్క నాట్ అనురోధ సేవా ప్రాప్తిలో ప్రతికు ప్రలోభన నదీ అసలు సేవా లీన హార్దిక అపీల్ సేవా ప్రాప్తిలో కొన్ని గ్రాహకులైన రాష్ట్రీయ అధికార కార్యాలయ ప్రముఖ
1: प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय
2: विराजमानला
1: एक गीत गाउँ कता हिँड्ने
3: जापानिज भाषा पढेर जापान छ कि भनेको दिदी गाउँमा जापानिज भाषा पढाइ नहुने रहेछ
1: खोज्दै हिँडे संसार भेटिन्छ रे नि त बरु कुन ठाउँमा राम्रो पढाइ हुन्छ भनेर चाहिएको हो भने म बताइदिन्न है
3: मेरो त नाम चाहिँ यही हो जापान जान कुन इन्स्टिच्युटमा राम्रो पढाइ हुन्छ अनि के प्रोसेस गर्नुपर्छ थाहा नपाएर तनावमा पो छु हौ
1: अब चिन्ता नमान कान्छ ओरियन बिजनेस ग्लोबल इन्स्टिच्युट सावन छोड्छ जापानिज भाषा पढ्ने अनि जापान जाने
3: होइन यही इन्स्टिच्युटमा चाहिँ किन पढ्ने त अरू छैन त पढ्ने ठाउँ
1: ओरियन बिजनेस ग्लोबल इन्स्टिच्युटमा अरूको भन्दा छुट्टै विशेषता छ यहाँ जापानबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका तथा जापानी शिक्षकहरूबाट भाषा कक्षा पढाउनुको साथै साप्ताहिक नियमित टेस्ट कक्षा छुट्टीमा पनि यसो गरिने र बिना झन्झट जापान जान प्रशिक्षण समेत गरिन्छ यसका साथै कममा ल्याएका वा कम सिपी ल्याएका ब्याक लागेर पास भएकाहरूले पनि जापानमा पढ्न जान अप्लाई गर्नु र जापानको टोकियो ओसाका नागोया फुकुओका लगायतका शहरमा जाने सुविधा पनि उपलब्ध छ
3: सबै कुराको सुविधा त थाहा भयो दिदी कक्षा संचालन कतिखेर हुँदैछ
1: सुन कान्छ यस इन्स्टिच्युटमा जापानिज भाषा कक्षा बिहान 6 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म नियमित भइरहेका छन् त्यसैले आफू चाहिँ सुरक्षित गरिहाले कान्छ
3: ल दिदी म त हिँडे ओरियन बिजनेस ग्लोबल इन्स्टिच्युटमा तपाईँहरू पनि आउनुहोस् है
4: हजुर सबैको विश्वासी र भरपर्दो जापानिज भाषा पढाउने इन्स्टिच्युट ओरियन बिजनेस ग्लोबल इन्स्टिच्युट चावेल केएल टावर छैटौतला काठमाडौँ सम्पर्क
1: 98550 17979
4: र 01-592-26-16 वेबसाइट www.obgi.edu.np ओरियन बिजनेस ग्लोबल इन्स्टिच्युट ओबीजीआई एजुकेशन कन्सल्टेन्सी नेपाल चावहन चुच्चेपाटी काठमाडौँ

0: 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: साथमा
0: न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुर्गुण्ड नगरपालिका पाँच सोलु

कोलोनिया तथा सोलामाई ऑक्सीड प्रिंटिंग प्रेस सुनोदित कुंडी नगर पालिक पांच समेरी सुनखुम्बू विगत देखने ग्राहक विश्वास भित्ती आयो न्यू स्टार कोलोनिया तथा सोलामाई ऑक्सीड प्रिंटिंग प्रेस थप सेवा का साथ में सब सुंदर हमारा सेवा प्रेस संबंधी संपूर्ण काम किताब कैलेंडर ब्रोशर बिल मीटर पैड रजिस्टर विवाह कार्ड फ्लेक्स प्रिंट बोर्डिंग बोर्ड फोटो जर्सी प्रिंट गाड़ी तथा बाइक को नंबर प्लेट सफाई साथ ही स्टेशनरी का सामान होलसेल मूल्य में पाइन बीपीआर कंपनी को एलईडी बल्ब पावर सकेट पैनल लाइट ट्यूब लाइट प्रीमियर कंपनी को सब खाल का तार पाइन सीजी कंपनी का संपूर्ण सामान कंपनी के मूल्य बिक्री वितरण गरिँदै आएको छ सीजी कंपनी को फ्रिज डीप फ्रिज वाशिंग मशीन माइक्रोवन मुहाउने गीजर गैस चूलो भैक्यूम तथा किचन को संपूर्ण सामान उपलब्ध छ एलईडी टीवी कंप्यूटर लैपटप कलर प्रिंटर फोटोकपी मशीन झाड़ ढोका में लगने मोटो तथा पातलो रंगीन सीसा फोटो फ्रेम होलसेल मूल्य में बिक्री वितरण गरिन्छ हार्डवेयर का संपूर्ण सामान काटी कब्जा छेस्किनी तालछा वाल मिक्सर मोनी सावर बेसिन धारा कमोट पेन सेट पीवीसी पाइप सीपीवीसी पाइप पाइनों का साथ ही फ्रिज डीप फ्रिज वाशिंग मशीन कंपनी के मूल्य में पाइन्छ अनि यी सबै मरम्मत पनि गरिन्छ र ग्यास वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वेल्डिंग साथ ही बाइक को ट्यांकी कलर पनि गरिन्छ यति मात्र होइन समीरी बस पार्क में रहकर न्यू स्टार तथा ज्वालामय ऑटो वर्कशॉप बाट गैस सिलिंडर गैस चूलो साथ ही सब खाल का बाइक तथा स्कूटर मरम्मत कर पार पुर्जा मोबिल हेलमेट रेनकोट होलसेल मूल्य में बिक्री नया तथा रिकंडीशन बाइक समेत अर्डर अनुसार उपलब्ध कराई संपर्क नंबर 0385203089 0385203060 मोबाइल नंबर 9860324426 र 9841909450 न्यू स्टार कोलोनिया तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस

0: प्रोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: संक्षेप सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: इट्स 8 PM रातको 8 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोनू दुकुम नगर पालिका 5 सोनू कुम्बू
3: Wherever you are, stay connected with the wider world with the BBC World Service. Now streaming on Zeno.fm and the Zeno Radio app.
4: Where do we begin?
3: With international news you can trust, BBC News.
4: Journeys into the heart of global events.
3: And voices from around the globe.
5: The whole region is in the grip of a severe water crisis. And I'm here to find out what.
3: The BBC World Service, right here on Zeno.fm and the Zeno Radio app.

0: 高知県民生法参考をお教えてください。
1: नागरिक सहायता कक्ष संचालन होने संबंधी सूचना अदालत द्वारा ग्रही महानुभाव यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रभावी सेवा प्राप्ति को सहजीकरण को नागरिक सहायता कक्ष संचालन उक्त कक्ष निःशुल्क सेवा प्राप्त होने सकने सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष का संपर्क राखने अनुरोध कर सेवा प्राप्ति में कति को प्रलोभन नगरी आपको सेवा लिना हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कने अधिकार कार्यालय प्रमुख संपर्क
2: कोशी प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय

0: 아이야, 아이야, 보내라고 버셔서도. 미란 못해요.
1: 딘딘데기 다두 개로, 뭐다 하이란, 와이니. 우버자르가나 까만나오 나이자니 버서.
0: 아, 꽃이 삐르마니고. 기코 까만나오 나이자니 버서. 대신 살리리 버선다 버다르마. 다음코 소베이 세와 수비다 소이트코. 이브레스 덴탈 클리닉 아이쇼케다. 버르자노 스테이.
1: 오라. 게 덴탈 레.
2: Everest Dental Clinic Sulhudut Kundinagar Palika Pass Basanta Bazar Saliri Sulukhumbu
0: Hamra Sewa Haru
2: Dat Safa Garne Dat Talkauni Dat Ma Cement Bharne Dat Color Ko Cement Bharne Nadukai Dat Nikalne Dukhi Ko Dat Lai Nadukne Gari Jara Dekhi Upachar Gari Dat Bachauni Nikna Ra Lagauna Sakne Gari Dat Rakhni Guarantee Bhai Ko Fix Dat Rakhni Guarantee Bhai Ko Pure Set Dat Lagauni Bango Tingo Dat Milauni Dat Ko एक्सरे गर्ने सुन चाँदी को दाँत राख्ने गिजा सुन्निने रगत आई राख्ने मुख गनाउने समस्या को उपचार गर्ने बच्चा को दाँत निकाल्ने साथै किरा लागेको दाँत भर्ने बच्चा को उमेर नपुगी दाँतमा किरा लागेर दुखेमा उपचार गर्ने र मुख नखुल्ने समस्या को उपचार गर्ने नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकहरूद्वारा संचालित एभरेस्ट डेन्टल क्लिनिकमा व्यवस्थित स्ट्यान्डर्ड स्टेरिलाइजेसन स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल र अत्याधुनिक टेक्नोलोजी प्रयोग गरी सम्पूर्ण सावधानी र बनाई दाँत तथा मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू दिइरहेको समेत सम्पूर्णमा जानकारी गराइन्छ समय बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 7 बजेसम्म पुनश्च शनिबारको दिन साथै अन्य सार्वजनिक बिदाको दिन समेत एभरेस्ट डेन्टल क्लिनिकको सेवा सुविधा लिन सक्नुहुनेछ
0: एभरेस्ट डेन्टल क्लिनिक बसन्त बजार सोलुखुम्बु ज्वालामय अफसेट र उद्योग वाणिज्य संघ भवनको बीचमा प्रोपाइटर श्रीराम सहनी सम्पर्क 9821129990 र 9746583487

पवन बने तुम गए हो मोहित्रा साये को उजालो तेरे झुल गए हो मेरी उन्हें झुल की रानी लाए I'm not going to be able to do it. उनके नजीक जाऊं संग माया लाऊं उनके नजीक जाऊं संग माया लाऊं।